एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिह्न अर वरन जात अर पात नहिं जे।

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे वाहे।

सब सुरति मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां किया वड्याईया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट समय तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरिन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहस तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे बरिया मरण काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करियो रक्षा राख लियो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्म अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदंती कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकुन को शिवगुन सुख दियो शत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट की पट पट की जानै जबुद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत दे धर सब हो जीते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरयालम निरंकार निर्विकार निरलंब याद नील नाद सांब ताका मूड़ चारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महा मूड़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜਕੀਨੀ, ਕੁਝ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੈਠਾ। ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਜੰਭਵ। ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠੋ ਤੁਤ ਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ। ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਵ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੋਇ ਮਰੇ। ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ। ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਪਟ ਨਹਿ ਹੈ। ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤਕਾਲਾ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰ ਹੋ। ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸ ਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਏਕ ਵਾਰ ਜੰਤ ਮੈਂ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਖਾਸ ਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ।

दुष्ट दोख ते हो बचाई सवैया। पाई गहे जबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहें हम एक न जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखाने। दोहरा सगल द्वार को शाड़ का

दास गोविंद दास तुहार सगल द्वार को शाड़ कै गहयो तुहार द्वार बाही गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दोता गावहो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रह हर नाले हर नाल रह तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार यहो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो सारे कह नानक मन मेरे सदा रह हर नाले सचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिवत सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वस्या जनिशा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटह जिस दियाँ हे वडियाइया कह नानक सुनो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे अनद सुनो वड भागियो

संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे।

कोई तरस पया विरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलता जीवा

जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुर नानक जिन परस्यो ते जन्म मरण दोह थे रहो हर गुर नानक जिन परस्यो ते जन्म मरण

वाहे गुरु बोलो जे पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे प्रथम

पवित्र स्थान सत खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर।